0: राजीव आयो।
1: माय शक्ति, आज पहली बार तुमने काम की बात की है।
2: They go in one way.